0: समयको ख्याल राखौं। 6 बज्यो।
1: खरो विषयमा दरो बहस, नेपाली बहस।
2: यस नेपाली बहसका साथमा प्रीति तयारी चाउचाउ।
3: ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक।
4: डिसोम फाइबर नेट।

World Ingo Festivity Offer. अब पाउंड हाउस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेशनल नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट्स बॉक्स मात्र रूप 1200 प्रति महीना में शर्तहरू लागू होने छिटो बनेगा ये वर्ल्ड लिंक।

0: गीत संगीत को बजार में सुपा दौराले म्यूजिक प्राले सगौरव प्रस्तुत गर्दछ गीत संग्रह आंसू पिउछु बरु यमन खनाल को म्यूजिक अरेंज में प्रेम ओली को उत्कृष्ट लय भूपेन्द्र बीएम को शब्द सिर्जना में अमित बाबू रोका र पूर्णकला विषय को सुमधुर स्वर में सुपा दौराले म्यूजिक प्राले मार्फत सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ। उत्पादक सुपा देउराली म्यूजिक प्राली प्रबंध निर्देशक यमन खनाल 98490404।
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को

क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीर मान्छ फागुन।

0: Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet and net TV साथ में dual band router and Nokia Beacon 1.1 mesh router and net TV sets a box. मात्र रु 1200 प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो भने गई Willing.
1: दमोली FM 94.2 समुदाय को आ

सम्पर्क नम्बर 0965564595, मोबाइल नम्बर 9846062803, दमौली कलेज, व्यास नगरपालिका वडा नम्बर 4, जलदेवी टोल।

शर्मा क्रॉम्प्टन ब्रांड का एयर कूलर सीलिंग फैन स्टैंड फैन मिक्सर र आयरन को खरीद में एक्साइटिंग ऑफर पाउन होस हर एक 15 दिन में क्रॉम्प्टन को मिक्सर र बम्पर लक ड्रामा माइडिया डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने मौका पनी नागरिकता मात्र भाई पुग्छ सहज ईएमआई

0: एप्लायंसर को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट्स। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट्स, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन र फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।
1: यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्क को। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
2: नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। नेपालको विरोधलाई व्यवस्था गर्दै भारतले नेपाली भूमि लिपुले खुँदै आफ्ना तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर पठाउन लागेको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहिबार लिपुले खुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने यात्रीको छनौट पूरा गरेको हो। भारतले कम्प्युटराइज्ड ड्र मार्फत तीर्थयात्री छनौट गरेको हो। भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले